आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 14 जुलाई सन 2026। सुबह के 5:57 होने को है। हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है। हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा। ये आयोजन वस्त्र, फैशन, स्थिरता, प्रौद्योगिकी, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। इस दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत हो गई और 6 लापता हैं। ये नाव 2 जुलाई को शंकरपुर समुद्री बंदरगाह से 15 मछुआरों के साथ रवाना हुई थी। 5 जुलाई से नाव से संपर्क टूट गया था। वियतनाम के फू क्वॉक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शव स्वदेश लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की सरकारें इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेंगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू क्वॉक द्वीप पर में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज से हॉर्मुज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर

0: ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हॉर्मूज जल डमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर अपनी ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। यदि कोई उत्तर मेल नहीं खाता है तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन कर अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान कर चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जल भराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपली केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। शुभारंभ कर रहे हैं मातृवंदना से।

समूह स्वर में योगेश की ये देशभक्तिपूर्ण रचना अभी आपने सुनी। लीजिए अब सुनिए चंद्रो आत्मा के स्वर में रुक्मणी सुंदर की रचना।

आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आइए अब सुने लता मंगेशकर के स्वर में संत मीराबाई की रचना।

पंडित कुमार गंधर्व के स्वर में अभी आपने सुनी संत कबीर की शब्द रचना। भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना के अंत में लीजिए सुनिए हरिओम शरण और नंदिनी शरण के स्वर में ये भजन।

0: इसी के साथ आज की वंदना यहीं संपन्न होती है। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए चिंतन। आलेख श्री विक्रम सिंह का है।
1: इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति श्रम की है। हमें ये कदाचित नहीं भूलना चाहिए कि अजंता एलोरा, चीन की दीवार, ताजमहल, कुतुब मीनार जैसी अति सुंदर कलाकृतियों ने श्रमशील हाथों से ही आकार पाया है। लेकिन आश्चर्य की कहीं किसी कृति पर किसी भी कलाकार ने अपना नाम नहीं उकेरा, क्योंकि इसे तराशने वाले जानते थे कि असल में उनकी कला का योग्यता का ही मूल्यांकन होना है। वे तो समय के साथ कालकवलित हो जाएंगे, लेकिन उनका श्रम, उनकी कला हमेशा जिंदा रहेगी। वास्तव में निष्काम भाव से कर्मरत व्यक्ति अर्जुन की तरह सफल हो जाता है। काम की लगन और एकाग्रता का भाव रखते हुए लक्ष्य के प्रति सजग रहकर जो अनुकूल परिश्रम करता है, वो कभी निराश नहीं होता, उसे सफलता जरूर मिलती है। निष्ठापूर्वक किया गया श्रम ही पुरुषार्थ है। जीवन में सफलता अर्जित करने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है। दुनिया में जितने भी इतिहास पुरुष हुए हैं, उन्होंने कठोर परिश्रम कर जीवन को सार्थक बनाया है। उन्होंने जीवन को साधा है, साधना की है, संघर्ष किया है। श्रम साधना, श्रम शक्ति और लगन से सफलता की सीढ़ियां पार कर मंजिल तक पहुंचने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त होता है जो इसके मर्म को समझते हैं। श्रम दो प्रकार का होता है, एक शारीरिक और दूसरा मानसिक। ये अति आवश्यक है कि शारीरिक और मानसिक श्रम का संतुलन बनाए रखा जाए। दोनों के संतुलन में ही श्रम की पूर्णता निहित है। अकेला मानसिक श्रम अपूर्ण है, तो शारीरिक श्रम भी मानसिक श्रम के अभाव में अपूर्ण रह जाता है। विचार करने और कार्य करने की सम्मिलित शक्ति से ही श्रम का पूर्ण स्वरूप बनता है, और उसी से किसी भी क्षेत्र में परिपूर्ण सफलता भी अर्जित की जा सकती है। जीवन में सफलता की कुंजी दृढ़ इच्छा शक्ति और श्रम के प्रति आस्था है। जीवन को संवारने के लिए कठोर परिश्रम और लगातार प्रयास अत्यंत आवश्यक है। श्रम शक्ति ही जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है। जिसके पास यह शक्ति है, वो सदैव विजयी।

0: श्रम ही प्रगति का मुख्य आधार है। इसलिए जरूरी है कि निरंतर आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति हमेशा बनी रहे। जीवन को सफल और महान बनाने का मार्ग कर्मशीलता, कठिन परिश्रम और दृढ़ता से ही प्रशस्त होता है। इसीलिए कहा भी जाता है, श्रमेव जयते, यानी श्रम सदा विजयी होता है। मेहनत मशक्कत से व्यक्ति मनचाहा फल पा सकता है। सिर्फ श्रम ही तो है जो मिट्टी को सोना बना देता है। अकर्मण्य व्यक्ति कभी भी अभिष्ट को प्राप्त नहीं कर सकता, वो जीवन भर दरिद्र बना रहता है। कहने का तात्पर्य ये है कि मेहनत से ही जीवन को सार्थक और प्रेरक बनाया जा सकता है। गीता में भी कहा गया है कि फल की इच्छा किए बिना किया गया काम ही योग्य कर्म कहलाता है। सच है, श्रम जब सत्कार्यों का योग बन जाता है तो ये जीवन का परम पद प्राप्त कर लेता है। श्रम इसलिए भी वंदनीय है क्योंकि इसमें भाग्य को बदलने की शक्ति है। हाथों की लकीरों को भी श्रम से बदला जा सकता है। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो असंभव हो। श्रम ही है जो मुश्किलों को भी आसानी में बदल देता है। इसलिए कहा जा सकता है कि श्रम स्वयं का उद्धार तो करता ही है, साथ ही ये देश और समाज को भी उन्नति के शिखर पर आसीन कर देता है।
1: चिंतन अभी आप सुन रहे थे, आलेख श्री विक्रम सिंह का था। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान,
2: एपिसोड नंबर 230।

देवताओं का हित इसी में निहित था कि भरत के अनुनय विनय को मानकर श्री राम वन से वापस न चले जाएं। अतः इंद्र सहित अन्य देवगण ने एक बार फिर सरस्वती से प्रार्थना की कि वे अपनी माया से भरत की मति फेर दें, ताकि श्री राम को लौटा ले जाने में भरत सफल न हो सकें। किंतु सरस्वती जानती थीं कि भरत की मति सुमेरु पर्वत के समान अटल है, और ये भी कि ब्रह्मा विष्णु तथा महेश की प्रबल माया के लिए भी ये संभव नहीं कि वो भरत की मति फेर सकें। फेरना तो दूर, वो उनकी ओर देख भी नहीं सकेंगी। स्वार्थवश सब देवताओं ने प्रबल माया जाल रचकर चारों ओर भ्रम, अप्रीति और भय फैला दिया। देवराज इंद्र को ये आशंका बनी रही कि कार्य का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ में है। उधर मुनिवर वशिष्ठ, राजा जनक तथा भरत श्री राम के समक्ष उपस्थित हुए। कुलगुरु ने भी इससे पहले जनक और फिर भरत का ये प्रस्ताव निवेदित किया कि स्वयं भरत श्री राम के साथ वन में रहें और लक्ष्मण अयोध्या लौट जाएं। मुनिवर ने निर्णय श्री राम पर छोड़ दिया।

0: श्री रामचरितमानस गान अभी आप सुन रहे थे। स्वर श्रीकांत पारगांवकर का था और आकाशवाणी की इस संगीतमयी प्रस्तुति के संगीत निर्देशक थे सतीश भाटिया। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 6:45 हुए हैं। कृषि चर्चा में लीजिए सुनिए तिल की उन्नत खेती विषय पर डॉक्टर परमेश्वर साहू द्वारा दी गई जानकारी।
1: नमस्कार किसान भाइयों, आज हम खरीफ तिलहनी फसलों जैसे कि तिल, राम तिल एवं सूरजमुखी की उन्नत काश तकनीक के बारे में आपको जानकारी प्रदान करेंगे। इसमें जैसे कि भारत सरकार का एक राष्ट्रीय तिलहन मिशन चल रहा है, उसके अंतर्गत भारत सरकार तिलहनी फसलों को बहुत अधिक मात्रा में किसानों को मध्य प्रसार करना चाहती है। इसी के तहत मैं आपको बताना चाहूँगा कि तिल, रामतिल और सूरजमुखी इसको छत्तीसगढ़ में लगाने के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है और इससे किसान अधिक से अधिक फायदा कमा सकते हैं। इसके लिए जो भूमि होती है वो बिना मेढ़ वाली उचहन भाटा एवं कन्हार भूमि जिसमें जल निकास की उचित व्यवस्था हो, ये इन तीनों फसलों के लिए उपयुक्त होती है। और इसमें भूमि की तैयारी अगर करना चाहें तो 2 से 3 बार कल्टीवेटर और रोटरीवेटर चलाकर अच्छे से जुताई कर दें और उसमें भुरभुरा मिट्टी में इनकी बुआई की जा सकती है। जो तिल है इसके लिए अगर उन्नत तिल किस्में की बात करें तो RT 372 गुजरात तिल, 11 VRI उन्नत रामा, जवाहर तिल 14, ऐसे अलग अलग किस्में हैं जो लगभग 80 से 100 दिन के अवधि में पक करके तैयार हो जाती हैं। इसी प्रकार राम तिल की बात करें तो JNS 2016-11-15, JNS 2016-14-13, JNS 2017-13, JNS 2015-9, JNS 521, ये राम तिल की किस्में हैं जो लगभग 100 से 110 दिन में पक करके तैयार हो जाती हैं। सूरजमुखी की बात करें तो SN H1 LSFH 171, KBSH 85, KBSH 85, KBSH 88, KBSH 44, KBSH 90, ये आदि संकर किस्में हैं जो कि 80 से लेकर के 95 दिन की अवधि में पक करके तैयार हो जाती हैं। अगर बीज की मात्रा की बात करें तो तिल के लिए 5 से 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, राम तिल के लिए 5 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और सूरजमुखी की संकर किस्मों के लिए 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। बीजों को अच्छे से बीज उपचार करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम या ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीज उपचार करना चाहिए। तत्पश्चात

एजोइस पेरिलम पीएसबी और केएसबी का प्रत्येक का 2 मिलीलीटर मिलाकर उसमें 4 मिलीलीटर पानी मिलाकर कुल 10 मिलीलीटर तैयार करें और 1 किलोग्राम बीज को उपचारित करें। बुआई का समय जो है 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच उपयुक्त होता है रामतिल के लिए 1 से 15 अगस्त के मध्य, और सूरजमुखी के लिए 15 जून से 15 जुलाई का जो अवधि है उसमें अच्छी फसल प्राप्त की जा सकती है। बुआई का तरीका कतार बोनी सबसे उपयुक्त होती है। इसमें तिल के लिए कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर बना करके रखना चाहिए। राम तिल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। इसी प्रकार से सूरजमुखी के लिए कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। खाद एवं उर्वरक की मात्रा की बात करें तो तिल के लिए 1 से 2 टन गोबर की मात्रा ये सभी फसलों में लगती है। इसके अलावा नाइट्रोजन 40 किलोग्राम, फास्फोरस 30 किलोग्राम और पोटास 20 किलोग्राम तथा सल्फर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेतों में डालना चाहिए। राम तिल के लिए भी गोबर की खाद 1 से 2 टन, नाइट्रोजन 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस

0: खाद एवं उर्वरक की मात्रा की बात करें तो तिल के लिए 1 से 2 टन गोबर की मात्रा ये सभी फसलों में लगती है। इसके अलावा नाइट्रोजन 40 किलोग्राम, फास्फोरस 30 किलोग्राम और पोटास 20 किलोग्राम तथा सल्फर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेतों में डालना चाहिए। राम तिल के लिए भी गोबर की खाद 1 से 2 टन, नाइट्रोजन 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, पोटास 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और सल्फर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रदान की जानी चाहिए। सूरजमुखी की जो संकर किस्में हैं उनके लिए गोबर की खाद थोड़ा ज़्यादा लगती है, इसमें 7 से 8 टन प्रति हेक्टेयर, नाइट्रोजन 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटास 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा सल्फर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा से देनी चाहिए। बीच बीच में निंदाई गुड़ाई एवं निंदा प्रबंधन का कार्य किया जाना चाहिए ताकि फसल को निंदा से प्रभावित ना होना पड़े। इसके लिए लगभग 45 दिनों तक फसल को मुख्य रूप से जितने भी निंदा है उनसे साफ सफाई बना करके रखनी चाहिए। खरपतवार प्रबंधन के लिए क्विजालफाप इथाइल, जिसको टर्गा सुपर एवं अन्य समान उत्पाद के नाम से आते हैं, इनका 40 से 45 ग्राम सक्रिय तत्व 800 से 200 व्यावसायिक उत्पाद को बोनी के 15 से 20 दिन या खरपतवार के 2 से 3 पत्ती की अवस्था में 500 लीटर पानी में मिलाकर 1 हेक्टेयर में छिड़काव कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर इनमें बात करें तो बीमारियां जो हैं, तिल में सर्कोस्पोरा पर्णदाग लगती हैं, इनके लिए बीज उपचार किया जाना बहुत जरूरी जैसे कि मैंने बताया था। धन्यवाद किसान भाइयों।
1: कृषि चर्चा में तिल की उन्नत खेती विषय पर अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर परमेश्वर साहू द्वारा दी गई जानकारी। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। समय है कार्यक्रम विवरण का।

आइए श्रोताओं, आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज दिन भर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। स्पोर्ट्स कैन सुनिएगा रात 8:30 पर, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर सुनिएगा रूप कुमार सोनी का सितार पर बजाया राग कौनसी कान्हड़ा। अब से कुछ ही देर में यानी सुबह 7:05 पर पेश करेंगे सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक कार्यक्रम मोर भुइया में सुबह 8:30 पर सुनिएगा कवि गोष्ठी। प्रतिभागी होंगे श्री रामेश्वर वैष्णव, श्री डूमन लाल ध्रुव और श्री अशोक कुमार साहू। संपादक और प्रस्तुतकर्ता होंगे महेंद्र साहू। सुबह 9:00 आप सुनेंगे झलकी अजी सुनिए, आलेख अनुभा अग्रवाल का होगा और प्रस्तुति समीर शुक्ल की होगी। प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर सुबह 10:00, दोपहर 12:00 प्रायोजित कार्यक्रम NCERT हमर हाथी हमर गोट, ये प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 5:00। शाम 6:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान सदाबहार नगमे पेश करेंगे दिन के 11:30 पर। महिलाओं के कार्यक्रम घरांगन में दोपहर 1:30 पर आज के गोट का विषय होगा हमर संस्कृति में जगन्नाथ रथ यात्रा। साथ ही सुनिएगा वार्ता, विषय होगा परिवार टूटे के कारण। वार्ताकार होंगी पुष्पा शर्मा और होंगे बहिनी मन के चिट्ठी और गीत संगीत। शाम 5:10 पर युवाओं के कार्यक्रम युववाणी में आज अपन गोट का विषय होगा गांव ला घलो जरूरत है प्रतिभा के। साथ ही होंगे क्रम सवाल जवाब और माटी के गीत। किसान साथियों के कार्यक्रम चौपाल में शाम 7:21 पर आज की बात का विषय होगा हरियाली ले रोजगार पावन, मानसून में नर्सरी लगावन। और किसान वाणी में फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी का विषय होगा नर्सरी तालाब में मत्स्य बीज उत्पादन और प्रबंधन। और इस विषय पर जानकारी देंगी मनीषा खापरडे। संचालन पूजा चंद्रवंशी का होगा और प्रस्तुतकर्ता होंगे शशि प्रकाश पांडे।

प्रसारण समय होगा सुबह 9:15 पर, सुबह 10:30 पर, दोपहर 1:05 पर, दोपहर 2 बजे, 2:30 पर, शाम 7 बजे, रात 8 बजे और रात 9:15 पर।

कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को है। समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं, पहले संस्कृत फिर हिंदी में।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा। ये आयोजन वस्त्र, फैशन, स्थिरता, प्रौद्योगिकी, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में नौ दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2,00,000 रूपये और घायलों को 50,000 रूपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। इस दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत हो गई और 6 लापता है। ये नाव 2 जुलाई को समुद्री बंदरगाह से 15 मछुआरों के साथ रवाना हुई थी। 5 जुलाई को नाव से संपर्क टूट गया था। वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की सरकारें इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेंगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू कोक द्वीप में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज से होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। किसी उत्तर का मिलान न हो तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन करके अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और

0: ₹100 के शुल्क का भुगतान करके चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। OMR चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज बर्मिंघम के एस्बेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम में बल्लेबाज विराट कोहली, रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का रायपुर और सरायपली केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। पेश है सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। श्रोताओं नमस्कार। नमस्कार रायपुर सुन रहे तमाम श्रोताओं का स्वागत अभिनंदन। नमस्कार रायपुर के इस सफर में आज मैं हूं आपके साथ दीपा। श्रोताओं हर नया दिन चेहरे पर मुस्कान, दिल में उमंग और सुरों का खूबसूरत साथ लेकर आता है और इस सफर में जब साथ हो सूचना, जानकारी, मधुर संगीत और आप और हम तो हर पल और भी खास हो जाता है। तो दिल को गुनगुनाने दीजिए, कदमों को थिरकने दीजिए, क्योंकि आपका दिन बनाने आ गए हैं हम।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय।
1: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
0: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
0: 47 सालों से निरंतर सेवा में
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
2: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपली केंद्र से आप सुन रहे हैं सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। श्रोताओं, कुछ धुनें समय के साथ पुरानी नहीं होती, वे पीढ़ियों की धड़कनों में बस जाती है। भारतीय सिनेमा के एक ऐसे ही मशहूर संगीत निर्देशक जिन्होंने शास्त्रीय संगीत और कव्वाली में अपनी बेमिसाल पकड़ बनाई। हम बात कर रहे हैं संगीतकार रोशन लाल नागरथ की, जिन्हें दुनिया सिर्फ रोशन के नाम से जानती है। आज 14 जुलाई को उनकी जयंती है। पंजाब के गुजरावाला में 14 जुलाई 1917 को जन्मे रोशन साहब बचपन से ही संगीत के साधक थे। वे एक खास वाद्य यंत्र बजाते थे, एसराज। पंडित एस एन रतनजंकर और उस्ताद अलाउद्दीन खां जैसे महान गुरुओं से शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में भी अपनी सेवाएं दी। बाद में मुंबई का रुख किया, जहां करियर में संघर्ष के बाद फिल्म बांवरे नैन ने उन्हें पहचान दिलाई। इसके बाद रोशन ने एक से बढ़कर एक कालजयी धुनें रची। बरसात की रात, ताजमहल, ममता, बहु बेगम, चित्रलेखा, दिल ही तो है, भीगी रात जैसी फिल्मों का संगीत आज भी उतना ही

ताज़ा लगता है। उनके संगीतबद्ध किए गीतों में जो वादा किया, रहे न रहे हम, निगाहें मिलाने को, दुनिया करे सवाल, ना तो कारवां, हम इंतज़ार करेंगे, लागा चुनरी में दाग और सारी सारी रात तेरी याद सताए, जैसे कई बेहतरीन गीत और कव्वाली उनकी सुर साधना की पहचान है। 16 नवंबर 1967 को रोशन इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन उनका संगीत आज भी हर पीढ़ी के दिलों में जीवित है। उनके बेटे राकेश रोशन और राजेश रोशन और उनके पोते ऋतिक रोशन ने भी भारतीय सिनेमा में उनकी विरासत को आगे बढ़ाया। रोशन नाम केवल एक संगीतकार का नहीं, बल्कि उन सुरों की रोशनी का नाम है जो आज भी दिलों को सुकून देती है। उनकी धुनें आने वाले समय में भी संगीत प्रेमियों के दिलों में यूं ही गूंजती रहेगी। रोशन साहब को उनकी जयंती पर याद करते हुए आइए सुने उनका संगीत बद्ध किया ये गीत।

ये मनमोहक संगीत, ये आवाज़ गज़लों के शहजादे और सुरों के जादूगर मौसिकार मदन मोहन की है, जिनकी धुनें भारतीय फिल्म संगीत के जरिए लोगों के कानों और दिलों में आज भी घुली हुई है। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें याद कर रहे हैं।

मैं ये समझता हूँ कि हर फनकार का जज्बाती होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसमें इंसानियत का जज्बा नहीं है तो वो सही फनकार नहीं है। ये शब्द है संगीतकार मदन मोहन कोहली के, जिनका जन्म 25 जून 1924 को बगदाद में हुआ। भारतीय सेना में सेवा करने के बाद उन्होंने अपने दिल की आवाज़ सुनी और सेना छोड़कर ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ का दामन थाम लिया। यहीं उन्हें बेगम अख्तर, उस्ताद फैयाज खां और अनेक महान कलाकारों का सानिध्य मिला। यही अनुभव आगे चलकर उनकी धुनों की पहचान बना।

1950 में फिल्म आंखें से उन्होंने स्वतंत्र संगीतकार के रूप में शुरुआत की। इसके बाद अनपढ़, वो कौन थी, हकीकत, मेरा साया जहां आरा, हंसते जख्म, दस्तक, हीर रांझा, दुल्हन एक रात की, देख कबीरा रोया, अदालत, मौसम जैसी कई कालजयी फिल्मों में उन्होंने गीत दिए जो आज भी संगीत प्रेमियों के लिए धरोहर है।

लता मंगेशकर उन्हें प्यार से मदन भैया कहती थी। उन्होंने एक बार कहा था, दूसरे संगीतकारों ने मुझे गाने दिए लेकिन मदन भैया ने मुझे संगीत दिया। ये उनके संगीत की सबसे बड़ी पहचान थी। मदन मोहन की धुनों में गजल की नज़ाकत, शास्त्रीय संगीत की गरिमा और भावनाओं की गहराई एक साथ सुनाई देती है। उनकी इस जुगलबंदी ने 1950, 1960 और 1970 के दशक में हिंदी सिनेमा को कई अमर गजलें और रोमांटिक गीत दिए।

मोहम्मद रफ़ी के साथ संगीतकार मदन मोहन का विशेष जुड़ाव रहा। कर चले हम फिदा तेरी आँखों के सिवा, तुम जो मिल गए रंग और नूर की बारात, ये दुनिया ये महफिल जैसे कई गीत आज भी सदाबहार है।

गज़लों और नज़मों की रूहानी तर्जों के सृजन के लिए अपना लोहा मनवाने वाले संगीतकार मदन मोहन के निधन के लगभग 30 वर्ष बाद बेटे संजीव कोहली को उनकी अप्रयुक्त धुनें मिली। यश चोपड़ा ने इन्हें फिल्म वीर जारा में इस्तेमाल किया। जावेद अख्तर ने उन पर शब्दों केरे और लता मंगेशकर ने अपने मदन भैया से किया वादा निभाते हुए उन्हें स्वर दिया और इस फिल्म के संगीत के लिए उन्हें उनके जाने के बाद सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए आईफा अवार्ड से नवाजा गया।

भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास में ऐसे विरले कलाकार कभी अपनी उम्र से नहीं, अपनी रचनाओं से जिया करते हैं। आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हैं। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, तुम सो गए दास्ता कहते कहते, सुरों की दुनिया का एक पंछी उड़ गया और आज तक कांपती है वो डालियां। संगीतकार मदन मोहन साहब की ये दास्तां भला कैसे खत्म हो सकती है। उन्हें शायद हमसे बहुत दूर जाना था, रुखसती तो एक बहाना था।

श्रोताओं, देश के एक हिस्से में बारिश बाढ़ बनकर तबाही मचा रही है तो दूसरे हिस्से में लोग पानी की एक एक बूंद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रकृति का ये विरोधाभास हमें चेतावनी देता है कि पानी की हर बूंद अनमोल है। यदि आज हम वर्षा जल का संरक्षण नहीं करेंगे तो आने वाले समय में जल संकट और भी गंभीर रूप ले सकता है। देश भर में मॉनसून सक्रिय है। बारिश अपने साथ हरियाली, खुशहाली और नई उम्मीदें लेकर आती है। किसान खेतों में बुआई शुरू करते हैं, जलाशय भरने लगते हैं और पेयजल के स्रोत को नया जीवन मिलता है। लेकिन विडंबना ये है कि जब अच्छी वर्षा भी होती है उसके बावजूद भी हर वर्ष देश के अनेक हिस्सों

पानी का संकट गहराता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण वर्षा जल का समुचित संचयन न होना है। श्रोताओं, वर्षा जल संचयन भू जल स्तर बढ़ाने का सबसे प्रभावी उपाय है। यदि बारिश के पानी को तालाबों, कुओं, बावड़ियों और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से धरती में उतारा जाए तो भविष्य में पेयजल और सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराया जा सकता है। कभी भारत की पहचान उसके परंपरागत जल स्रोत से होती थी, लेकिन समय के साथ इनकी उपेक्षा ने जल संकट को और भी गंभीर बना दिया है। आज देश के करोड़ों लोग पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन और अनियमित वर्षा ने इस चुनौती को और बढ़ा दिया है। ऐसे में जल की अनावश्यक बर्बादी को रोकना, वर्षा जल का संचयन करना और हर घर, हर संस्थान और हर गांव में जल संरक्षण को जन भागीदारी का अभियान बनाना समय की मांग है। श्रोताओं, हम जानते हैं कि जल है तो कल है। आज बचाई गई पानी की हर बूंद आने वाले पीढ़ियों के जीवन की सुरक्षा है। आइए इस मॉनसून संकल्प ले कि वर्षा की हर बूंद को सहेजेंगे और जल संरक्षण को अपनी आदत बनाएंगे, क्योंकि आप और हम सब चाहते हैं हमारे देश की धरती यूं ही सोना उगलती रहे। इसके लिए जरूरी है हम वर्षा की हर बूंद को सहेजे, क्योंकि पानी बचेगा तभी तो खेत लहलाएंगे, अन्न उगेगा और जीवन मुस्कुराएगा।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। श्रोताओं, 16 जुलाई को रथ यात्रा का पावन पर्व हम मनाएंगे। ये पर्व भारतवर्ष के जगन्नाथपुरी के साथ साथ कई राज्यों में मनाया जाता है। पर श्रोताओं, क्या आप जानते हैं हमारे प्रदेश में इस पर्व को गोंचा महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग मुख्य रूप से मुख्यालय जगदलपुर में मनाया जाने वाला एक 600 साल पुराना और बेहद अनोखा सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सव है। ये पर्व भी भगवान जगन्नाथ की उपासना से जुड़ा है, जिसमें आदिवासी और गैर आदिवासी समुदाय मिलकर हिस्सा लेते हैं। इस महोत्सव की शुरुआत 1408 ईस्वी में काकतीय वंश के राजा पुरुषोत्तम देव द्वारा की गई थी। इस त्योहार का सबसे बड़ा आकर्षण तुपकी यानी बांस से बनी एक पारंपरिक नकली बंदूक है। लोग इसमें गोंचा या पेंग नामक जंगली फल को गोली की तरह इस्तेमाल कर एक दूसरे पर चलाते हैं। साथ ही तुबकी को रंग बिरंगे ढंग से सजाया भी जाता है। ये आपसी भाईचारे और आनंद का प्रतीक है। और श्रोताओं, ये उत्सव रथ यात्रा के दौरान 9 दिनों तक धूमधाम से मनाया जाता है और इस उत्सव को देखने देश विदेश से पर्यटक पहुंचते हैं और इस अनोखे पर्व का आनंद लेते हैं। और महोत्सव की सांस्कृतिक छटा में आइए हम भी खो जाते हैं।

श्रोताओं, समय के साथ बदलती तकनीक जब पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी साथ लेकर चलती है, तब विकास की रफ्तार और प्रकृति का संतुलन एक साथ आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे भी अब ऐसे ही एक नए और हरित सफर की शुरुआत करने जा रहा है। देश में 17 जुलाई को पहली हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ किया जाएगा। ये ट्रेन हरियाणा में जिंद और सोनीपत के बीच चलेगी। शुरुआत में इसकी गति लगभग 75 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जिसे आगे चलकर बढ़ाया जाएगा। हाइड्रोजन ईंधन से संचालित ये ट्रेन डीजल ट्रेनों की तुलना में अधिक पर्यावरण अनुकूल मानी जा रही है। इससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। आधुनिक तकनीक से सुसज्जित ये ट्रेन यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक और बेहतर यात्रा का अनुभव भी प्रदान करेगी। भारतीय रेलवे का ये कदम हरित परिवहन और सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। हर नई मंजिल एक नए सफर की शुरुआत करती है। हाइड्रोजन ट्रेन केवल रेलवे की उपलब्धि नहीं है, बल्कि उस भारत की पहचान होगी जो प्रगति की तेज रफ्तार के साथ प्रकृति को की जिम्मेदारी भी निभा सकता है। आइए इस पहल का स्वागत करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और बेहतर भविष्य के निर्माण में अपना योगदान दें। तो खुश हो जाइए,

0: आपको खुश देखकर हमें भी खुशी मिलती है।
1: तुमको खुश देखकर मैं बहुत खुश हुआ, तुमको खुश देखकर मैं बहुत खुश हुआ। ये आंख भर आई तो फिर

सी शाख पर कौन सा गुल खिले, यारो ये तो नसीबों के हैं फैसले। किस लिए फिर करे कोई शिकवा गिला, तुमको खुश देखकर मैं बहुत

खुश देख कर मैं बहुत खुश हुआ। ये

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय
1: आँखी के जम्मू प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
2: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 बच्चन ले संलग सेवा माँ।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेलीबांधा, रायपुर।
3: श्रोताओं, प्रकृति हर मौसम में अपने रूप बदलती है और हमेशा से मनुष्य इन बदलावों को बड़े चाव से निहारता है, फिर चाहे वो फूल हो, पौधे या आसमान। मानसून के आते ही प्रकृति का रंग रूप खिल उठता है, नदियों का वेग बढ़ जाता है तो झरनों की आवाज भी बढ़ जाती है, हरियाली अपने चरम पर होती है तो आसमान से धरती पर आता संगीत मन को लुभा जाता है। लेकिन प्रकृति की इस खूबसूरती को देखने तो हमें उसके नजदीक ही जाना होगा। तो यही बात होती है मॉनसून टूरिज्म की, यानी पर्यटन की। और इस मौसम में आप बादलों को झूम कर छाते और बरसते देख सकते हैं, तो जल प्रपातों को अपने शबाब पर देख सकते हैं। इस मौसम में सफर भी बड़ा खूबसूरत होता है और सुहाना हो जाता है, बशर्ते कि

सावधानी से किया जाए। श्रोताओं, हर मौसम में हमारे प्रदेश के पर्यटन स्थल भी बेहद खूबसूरत हो जाते हैं, जैसे चित्रकूट, तीरथगढ़, कांकेर वैली, सरगुजा के साथ ही और भी बहुत से पर्यटन स्थल। तो आप भी समय निकालिए और निहारिए प्रकृति को करीब से, बसा लीजिए अपनी निगाहों में और चुरा लीजिए इन हंसी वादियों को।

श्रोताओं, उम्मीद करते हैं आपको हमारी प्रस्तुतियां पसंद आ रही होगी। अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराते रहिए। और नमस्कार रायपुर के सफर से अब दीपा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से चुनाव अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। पश्चिम बंगाल में नौ दुर्घटना के बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हुरमुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया। और भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
3: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3,00,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
2: डॉक्टर जयशंकर ने सदस्य देशों से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरश से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने पश्चिम एशिया, यूक्रेन और सूडान सहित वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की। उन्होंने भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच मजबूत सहयोग को भी स्वीकार किया। वियतनाम के फू कुओक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की सरकार इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्य वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू कुओक द्वीप में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने वाली ट्रॉलर दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत पर शोक व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने मृतक मछुआरों के परिजन को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की अभी घोषणा की है। एफबी महाकाली नामक ट्रॉलर 2 जुलाई को पूर्व मेदिनीपुर के दीघा संकटपुर मत्स्य बंदरगाह से 15 मछुआरों को लेकर रवाना हुई थी। 5 जुलाई के बाद ट्रॉलर से संपर्क टूट गया था। ट्रॉलर के केबिन

0: 9 शव बरामद किया गया है, जबकि 6 मछुआरों अभी भी लापता है, उनकी तलाश जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से संदीपन दास गुप्ता।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इस दौरान वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत को निशाना बनाया गया। इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमरीका के अनुसार ये कार्रवाई वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हमलों के जवाब में की गई। उधर ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार को निशाना बनाया। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान दोनों ने हुर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों के बारे में नई चिंता पैदा हो गई है। ओमान के पास हुर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हुर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमेरिका ने आज से हुर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हुर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा।
2: 4 दिवसीय इस आयोजन में वस्त्र, फैशन, सतत विकास, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व का प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम में निर्माता, निर्यातक, वैश्विक खरीदार, निवेशक, नीति निर्माता, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल, शिल्पकार, स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी प्रदाता एक मंच पर एकत्र होंगे। इस आयोजन में हजारों प्रदर्शक, 7,000 से अधिक खरीदार तथा 20 से अधिक देशों अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, पुर्तगाल, स्पेन, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया सहित अन्य देशों के प्रतिनिधि और प्रतिभागी शामिल होंगे। सरकार की मजबूत भागीदारी को दर्शाते हुए इस वर्ष 8 राज्य इस आयोजन के साझेदार हैं, जबकि 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रदर्शक के रूप में भाग ले रहे हैं। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में बुधवार से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सौश्रुतम आयोजित की जाएगी। इस संबंध में आज एक दिन की कार्यशाला होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सौश्रुतम का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव और दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इस संगोष्ठी का उद्देश्य आयुर्वेद और आधुनिक शल्य चिकित्सा के बीच सहयोग बढ़ाना तथा शोध, नवाचार और शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। ये कार्यक्रम शल्य चिकित्सा के जनक आचार्य सुश्रुत की स्मृति में आयोजित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड

0: मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, सिक्किम, कर्नाटक और उड़ीसा में तूफान की आशंका है। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। बिहार के कटिहार जिले के मूसापुर गांव से पुलिस ने पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क से जुड़े संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। कटिहार के उपमंडलीय पुलिस अधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि ये युवक राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त था।
1: जांच के क्रम में यह बात ज्ञात हुआ कि ये पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर के संपर्क में था एवं भारत में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। इस आरोप में इन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में आईबी, एटीएस एवं एसटीएफ की टीम का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में अनुसंधान एवं अन्य सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। किसी उत्तर का मिलान न हो तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन करके अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान करके चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। वहीं इंग्लैंड के लिलिशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का ये अंतिम मैच है। भारत ने पिछले मैच में इंग्लैंड को 2-0 से हराया था। इससे पहले अमेरिका ने शूटआउट में भारत को 3-2 से हराया था। उड़ीसा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन होंगे। स्नान पूर्णिमा के बाद पखवाड़े भर चलने वाले अंसार काल के बाद पवित्र त्रिमूर्ति का पहला सार्वजनिक दर्शन होगा। मान्यता है कि स्नान पूर्णिमा के बाद अपनी धार्मिक बीमारी से ठीक होने के बाद पवित्र त्रिमूर्ति देश भर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के समक्ष अपने नए युवा रूप में प्रकट होंगे। मंदिर प्रशासन, जिला अधिकारियों और पुलिस ने सुचारू और व्यवस्थित दर्शन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की है। नव यौवन दर्शन के साथ रथ यात्रा के पूर्व सभी अनुष्ठानों का समापन होगा और विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ होगा। रथ यात्रा गुरुवार को पवित्र त्रिमूर्ति की श्री गुंडिचा मंदिर तक की औपचारिक यात्रा के साथ मनाई जाएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद फरत। लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय महिला टीम के मैच जीतने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों में छाया हुआ है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, भारतीय बेटियों ने लॉर्ड्स में लहराया तिरंगा, विदेश में सबसे बड़ी जीत। वहीं जनसत्ता ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस को सुर्खी बनाया है। पत्र लिखता है, केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस, एसआईटी से स्थिति रिपोर्ट मांगी। अमेरिका ईरान जंग तेज, रूस भी कूदा, अमर उजाला की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रंप ने ईरान की फिर की नाकेबंदी, हॉर्मूज से गुजरने पर 20% टोल मांगा। जगन्नाथ यात्रा में पहली बार देवी सुभद्रा का रथ खींचेंगी महिलाएं, हिंदुस्तान ने बदलाव शीर्षक से ये खबर प्रकाशित की है। अब नहीं सजेगा दिल्ली पुस्तक मेला, 31 साल पुरानी परंपरा हुई खत्म, दैनिक जागरण ने ये खबर प्रमुखता से प्रकाशित की है। अमरीका अंतरिक्ष में दर्पण लगाएगा, रात में भी सूरज चमकेगा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, जब चाहे जहां चाहे मिलेगी रोशनी, इस साल लॉन्च हो सकते हैं 2 सैटेलाइट। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर श्रमिकों की सुरक्षा पर एक लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है, सफाई कर्मियों की सुरक्षा का सवाल। पत्र लिखता है, आज भी कई जगहों पर नाले या सेप्टिक टैंक की सफाई बिना सुरक्षा के श्रमिकों से कराई जाती है। हर

0: छत्तीसगढ़ी समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइयां के आज के अंक में आप सभी श्रोता साथी मन के स्वागत है। जय जोहार, राम राम, महेंद्र साहू को तिले। श्रोता साथी हो, आज के अंक में आप मल्ला सुनवाथन एक कवि गोष्ठी, और एक कवि गोष्ठी के संचालन करत हैं श्री डुमन लाल ध्रुव। तो आवा सुनाथन ये कवि गोष्ठी ला।
1: मोर भुइयां कार्यक्रम सुनैया संगवारी और श्रोता मल्ला हार्दिक जय जोहार। आकाशवाणी रायपुर द्वारा आयोजित काव्य गोष्ठी में पधारे हवे छत्तीसगढ़ी के सुप्रसिद्ध गीतकार कवि श्री रामेश्वर वैष्णव जी, जौन रायपुर ले पधारे हवे। श्री अशोक कुमार साहू आकाश जी, जौन बालोद ले पधारे हवे। और मैं डुमन लाल ध्रुव आप सबके हार्दिक स्वागत करत हूँ। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ के कवि अशोक आकाश जिला कविता पाठ करे बर सादर आमंत्रित करत हूँ।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ध्रुव जी। ये कार्यक्रम में पहली मोर कविता है दंदियावत रही से दिन भर। दंदियावत रही से है दिन भर, संझा द मोरे हे सुखा नंदिया पूरा चढ़ गे रंग झाझर झूरे। सुखा नंदिया पूरा चढ़ गे रंग झाझर झूरे।

0: सुखा नंदिया पूरा चढ़ गे रंग झाझर झोरे।
1: वाह।
0: सुखा नंदिया पूरा चढ़ गे रंग झाझर झोरे। जैसे बदरा घूंघट खोले चर चर चर चर घाम करे। जैसे बदरा घूंघट खोले चर चर चर चर घाम करे। कड़कड़ करा पड़ पड़ पानी रुम झुम बांध भरे। कड़कड़ करा पड़ पड़ पानी रुम झुम बांध भरे। सतरंगी धनुष देखे बर लैका सियान लो रहे। सुखा नंदिया पूरा चढ़ गे रंग झाझर झोरे। सुखा नंदिया पूरा चढ़ गे रंग झाझर झोरे। सुर सुर सुर सुर पवन झकोरा बेराला बिजरावत है। सुर सुर सुर सुर पवन झकोरा बेराला बिजरावत है। नारा बेला पहिराय कंगन रुख फुनगी इतरावत है। नार बेला पहिराए कंगन रुख फुनगी इतरावत है। नावा दुल्हिन

0: पूछय, पारा मोहल्ला नहीं पूछय, बस्ती है हमला नहीं पूछे, भगवान के भरोसा हन अब लोग लइका नहीं पूछे, भगवान के भरोसा हन अब लोग लइका नहीं पूछे, बस जाए के तैयारी है, बस जाए के तैयारी है, खोरवा हवन तक होगे छाती महामरो दिल के जी, डोकरा हवन तक होगे, गोठिया के महफिल है जी, गोठिया के महफिल है जी, भोबला हवन तक होगे छाती महामरो दिल है जी, डोकरा हवन तक होगे छाती महामरो दिल है जी, डोकरा हवन तक होगे। आओ,
1: बहुत अच्छा लगे।
0: मोर कविता के बाद आज जो ये कवि गोष्ठी के संचालन कर रहे थे डुमन लाल जी ध्रुव, रहे बर तो नवा नेवरिया लगते हैं, हालांकि 50 साल की उम्र तक पहुंचत हो ही, लेकिन एकर बहुत बढ़िया हाल ये है कि ये नई कविता लिखते हैं, छत्तीसगढ़ी में नई कविता लिखते हैं, ये लिखना बड़ा बौद्धिकता के बात है। और मैं उकर से आग्रह करूँ कि नई कविता के रंग में छत्तीसगढ़ी के ढंग ला पेश करें भाई डुमन लाल जी ध्रुव।
2: मोर कविता के शीर्षक है अपन जिंदगी बचाना। जंगल अब पहले जैसे नहीं बोले, जंगल अब पहले जैसे नहीं बोले, पेड़ मन खड़े रही थे ओकर छाव में।
0: वाह,
2: जंगल अब पहले जैसे नहीं बोले, पेड़ मन खड़े रही थे ओकर छाव में, थकान बैठे बर जगह नहीं बाँचे। जंगल अब पहले जैसे नहीं बोले, पेड़ मन खड़े रही थे ओकर छाव में, थकान बैठे बर जगह नहीं बाँचे, लकड़ी बन के निकले है जंगल।
0: वाह,
2: लकड़ी बन के निकले है जंगल, और माटी अपन हरियर सिंगार भर खोजत फिरत है, और माटी अपन हरियर सिंगार भर खोजत फिरत है।
0: वाह वाह,
2: तो धुआं हम हवा ले आगू भगत है, तो धुआं हम हवा ले आगू भगत है, मनखे अपन सांस ला हाथ ले टटोला थे, जैसे ऑक्सीजन घलो अब बाजार के चीज हो गए, नदी के पानी मा आगास के रंग कम है।
0: वाह वाह,
2: नदी के पानी मा आगास के रंग कम, कारखाने के छैया ज्यादा दिखते।
0: वाह वाह वाह,
2: गोड़ेला चिड़ई पड़की मैना कोयली सबके गीत धीरे धीरे चुप होवा जात है, लइका मन किताब में चिड़ई ला देखते।
0: वाह वाह वाह,
2: लइका मन किताब में चिड़ई ला देखते, अंगना में नहीं, फिर धरती है कोनो शिकायत नहीं करे, सिर्फ चुपचाप सुखात रही थे।
0: वाह,
2: धरती है कोनो शिकायत नहीं करे, सिर्फ चुपचाप सुखात रही थे, ओकर चुप्पी सबले बड़े सवाल आए, ओकर चुप्पी के सबले बड़े सवाल आए, अगर आज एक ठन बीज बो है तो काली कोनो डार है, हवाला जन्म दे ही, आज अगर एक ठन बीज बो है तो काली कोनो डार है, हवाला जन्म दे ही, कोनो चिड़ई फिर अपन घर बनाही, और मनखे समझी जंगल बचाना सिर्फ पेड़ बचाना नहीं, अपन जिंदगी बचाना आए, जंगल बचाना सिर्फ पेड़ बचाना नहीं, अपन जिंदगी बचाना है।
1: बहुत सुंदर।
2: मोर दूसर कविता है बिहान ला जगाही।
0: वाह,
2: आज बिहान के हवा थके थके ऐस।
0: वाह वाह वाह,
2: आज बिहान के हवा थके थके ऐस, ओकर संग फूल के महक नहीं धुआं के गंध रहिस। आज बिहान के हवा थके थके ऐस, ओकर संग फूल के महक नहीं धुआं के गंध रहिस, आज मनखे है मास्क पहिर के चलत है, आज मनखे है मास्क पहिर के चलत है, फिर पेड़ मन बिना शिकायत सबो ला सांस दे के कोशिश करत रहते हैं, कटत जंगल ला देख के, कटत जंगल

लकड़ी, जिनकी खुआर हो गए नून तेल लकड़ी, पानी भरे अंगना दुआर लिपत है, गोबर कचरा करत जिनकी बीतत है, पारा भर के सिलते लहंगा कथरी, जिनकी खुआर हो गए नून तेल लकड़ी, जिनकी खुआर हो गए नून तेल लकड़ी, ससुरला जेवंत देवरला पानी न

0: लकड़ी,
1: बहुत बढ़िया।
0: जिनकी खुआर हो गए नून ते लकड़ी।
1: अभी काव्य रचना पढ़त रहने श्री अशोक कुमार साहू आकाश जी, जेकर कविता में छत्तीसगढ़ के लोक जीवन, गांव गवई के संवेदना, समाज के यथार्थ और जागरण के गहिर चित्रण देखे बर मिलिस। और अब मैं हम आमंत्रित का करत हूँ जौन रायपुर ले पधारे हैं छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय गीतकार श्री रामेश्वर वैष्णव जी।
2: छत्तीसगढ़ी में एक गजल परोसत हूँ
1: जी।
2: बहुत पहली 7 नवंबर 1970 के यही आकाशवाणी रायपुर से मोर छत्तीसगढ़ी के पहली गजल
1: जी
2: प्रसारित हो रही से, और बीच बीच में कई ठन कवि गोष्ठी में

0: कीर्ति गीतकार श्री रामेश्वर वैष्णव जी।
1: छत्तीसगढ़ी में एक गजल परोसत हूँ
2: जी।
1: बहुत पहली 7 नवंबर 1970 के यही आकाशवाणी रायपुर से मोर छत्तीसगढ़ी की पहली गजल
0: जी
1: प्रसारित हो रही से, और बीच बीच में कई ठन कवि गोष्ठी में मैं हर गजल सुनाए हूँ। आज एक विशेष गजल सुनाना चाहत हूँ।
2: जी जी, स्वागत स्वागत।
1: गजल के मतला है
0: जी,
1: दिल हजत के उज्जर हो ही, दिल हजत के उज्जर हो ही, करनी ओत के सुघर हो ही।
2: बहुत बढ़िया।
1: दिल हजत के उज्जर हो ही, करनी ओत के सुघर हो ही, मेहनत के अचरा झन छोड़ो, मेहनत के अचरा झन छोड़ो, किस्मत खुदे मंगे तर हो ही।
0: वाह वाह।
1: दिल हजत के उज्जर हो ही, करनी ओत के सुघर हो ही।
0: बहुत बढ़िया।
1: जेन पसीना रोज बोहाही, रोज बोहाही हो, जेन पसीना रोज बोहाही, जेन पसीना रोज बोहाही, खेत ओकरे हरियर हो ही। दिल हजत के उज्जर हो ही, जेन पसीना रोज बोहाही, खेत ओकरे हरियर हो ही, दिल हजत के उज्जर हो ही, करनी ओत के सुघर हो ही। टुकना भर दुख परे हवैता, टुकना भर दुख परे हवैता, टुकना भर दुख परे हवैता, खुशी घलो गाड़ा भर हो ही। दिल हजत के उज्जर हो ही, करनी ओत के सुघर हो ही, दिल हजत के उज्जर हो ही, छैहा के सपना देखत हो, छैहा के सपना देखत हो।
2: बहुत बढ़िया।
1: छैहा के सपना देखत हो, कोनो दिन तुम्हरो घर हो ही। दिल हजत के उज्जर हो ही, पर के धन लौले जीलत है, पर के धन जौने लीलत है, पर के धन जौने लीलत है, पन के धन जौने लीलत है, घर में वो कर अजगर हो ही। दिल हजत के उज्जर हो ही, करनी ओत के सुघर हो ही। और आखिरी शेर है
2: जी जी,
1: बड़का मान उही लामिन ही, बड़का मान उही लामिन ही, बड़का मान उही लामिल ही, जेकर जौहर जांगर हो ही। दिल हजत के उज्जर हो ही, करनी ओत के सुघर हो ही, दिल हजत के उज्जर हो ही, करनी ओत के सुघर हो ही। आओ मैं अब फिर से डुमन लाल जी ध्रुवला कविता पढ़े बार आमंत्रित करा था। पहली बार कविता में उन छत्तीसगढ़ी में नई कविता सुनाई, और नई कविता के जतका तेवर है ते सब ला आप देखे हो। अब मैं उकर से गेलौली करत हूँ कि वह अपन काव्य पाठ शुरू करें।
0: कविता के शीर्षक है धरती के भुखार।
2: वाह, अच्छा शीर्षक।
0: धरती ला हल्का भुखार रहीस, धरती ला हल्का भुखार रहीस, मन के ध्यान नहीं दिस। धरती ला हल्का भुखार रहीस, मन के ध्यान नहीं दिस, भुखार बाढ़त गिस, नदी सुखाते गे, भुखार बाढ़त गिस, नदी सुखाते गिस, जंगल घटिस, गर्मी चढ़िस, फिर एक दिन सूरज नारायण घलो कड़क लगिस।
1: वाह।
0: फिर एक दिन सूरज नारायण घलो कड़क लगिस।
2: बहुत बढ़िया।
0: धरती किहिस, धरती किहिस, मोर दवाई पेड़ हवे।
1: वाह।
0: धरती किहिस, मोर दवाई पेड़ हवे।
2: बहुत बढ़िया।
0: मनखे सुनिस, फिर दूसरैया दिन फिर एक पेड़ कट गे। धरती किहिस, मोर दवाई पेड़ हवे। मनखे सुनिस,

0: फिर दूसरिया दिन फिर एक पेड़ कट गए, फिर एक पेड़ कट गए।
1: वाह वाह वाह वाह, समझना तो
0: दूसरा
1: पड़ेगा।
0: है आखिरी महुआ। महुआ के बूढ़ा पेड़ गांव के छोर में खड़े हैं। महुआ के बूढ़ा पेड़
1: गांव के
0: गांव के छोर में खड़े हैं। वो जानते हैं कि ओकर संगवारी मन एक एक करके जावत हवे।
1: वाह
0: महुआ के बूढ़ा पेड़ गांव के छोर में खड़े हैं। वो जानत हैं कि ओकर संगवारी मन एक एक करके जावत
1: जावत
0: हवे। फिर महुआ हर साल फूल झर रहते, धरती ऊपर सफेद चादर बिछ जाते।
1: आह
0: फिर महुआ हर साल फूल झर रहते, धरती ऊपर सफेद चादर बिछ जाते।
1: जी
0: पेड़ कही थे जब तक मैं हवा हूँ, पेड़ कही थे
1: जब तक मैं
0: जब तक
1: हूँ।
0: मैं हवा हूँ तब तक जंगल की कहानी जिंदा है।
1: वाह,
0: पेड़ कही थे जब तक मैं
1: मैं
0: हवा
1: हूँ
0: हूँ तब तक जंगल की कहानी
1: कहानी
0: जिंदा
1: जिंदा।
0: है। हवा ओकर बात ल दूर ले जाते, काबर की कहानी बचाना अब पेड़ बचाए जिसने कठिन हो गए
1: वाह
0: हैं।
1: वाह वाह,
0: काबर की
1: बहुत बढ़िया,
0: कहानी बचाना अब
1: बहुत
0: पेड़
1: बढ़िया,
0: बचाए जिसने कठिन
1: सुन,
0: हो गए।
1: वाह वाह
0: बहुत
1: वाह,
0: बढ़िया। तो अभी अपन मोर भुइयां कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ी काव्य पाठ करत रही हैं। छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय गीतकार आदरणीय श्री रामेश्वर वैष्णव जी जौन रायपुर ले पधारे हवे। श्री अशोक कुमार साहू आकाश जी बालोद ले पधारे हवे। और मैं डुमन लाल ध्रुव जौन धमतरी ले आकाशवाणी में मोर भुइया कार्यक्रम के तहत काव्य पाठ करे बर हाँ हूँ। और आप सबके उपस्थिति ला मैं सादर नमन का करत हूँ। जय जोहार।
1: जय।
2: अभी आप मन सुनत रहो कवि गोष्ठी। आओ एक कवि गोष्ठी के संचालन करत रहिन श्री डुमन लाल ध्रुव और एकरे संग छत्तीसगढ़ी समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइयां के आज के ए अंक ले मोला इहे विदा देवा। जय जोहार, राम राम।

छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइयां अभी आप सुन रहे थे। संपादक और प्रस्तुतकर्ता थे महेंद्र साहू। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण होगा।

श्रोताओं, आपको एक बार फिर याद दिला दे आज हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। स्पोर्ट्स कैन सुनिएगा रात 8:30 पर, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर सुनिएगा रूप कुमार सोनी का सितार पर बजाया राग कौन सी कान्हड़ा। शाम 5:10 पर युवाओं के कार्यक्रम युववाणी में आज अपन कोट का विषय होगा गांव ला घलो जरूरत है प्रतिभा के। साथ ही होंगे क्रम सवाल जवाब और माटी के गीत।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। प्रस्तुत है झलकी अजी सुनिए। आलेख अनुभा अग्रवाल का है और प्रस्तुति समीर शुक्ल की।
1: अजी सुनिए, अजी सुनिए।

0: हाँ, कहाँ चला गया, मिल ही नहीं रहा। ये पता नहीं मेरी याददाश्त को क्या होता जा रहा है, कुछ याद ही नहीं रहता। कौन सी चीज कहाँ रखकर भूल जाती हूँ। अब ये चश्मा पता नहीं कहाँ रख दिया, मिल ही नहीं रहा। उफ, तंग आ चुकी हूँ।
1: अरे भाई, ये सुबह सुबह क्या भुन भुन कर रही हो? भाई मुझे तो लगा भजन गुनगुना रही हो।
0: तुम्हें तो सुबह सुबह भी मजाक सूझता है।
1: अरे पर हुआ क्या ये तो बताओ।
0: होना क्या है, मेरा चश्मा पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, मिल ही नहीं रहा।
1: अरे भाई, इतना क्या जरूरी हो गया चश्मे का मिलना? क्या काम रुका है तुम्हारा उसके बिना?
0: काम ये है कि मुझे अखबार पढ़ना है।
1: अखबार? ओहो, आज तुम्हें अखबार पढ़ने की क्या सूझी? भाई देश दुनिया की खबरों से तुम्हारा क्या वास्ता? भाई तुम्हें तो मोहल्ले की गासिप से ही फुर्सत नहीं है ना?
0: तुम भी ना मेरी दुखती रख पर हाथ मत रखो। एक तो दिन भर घर में खाली पड़े पड़े बोर होती हूँ, तो सोचा आज से अखबार पढ़ के कम से कम सुबह का समय तो पास करूं, तो ये कमबख्त चश्मा ही नहीं मिल रहा।
1: अरे भाई, ये सब बुढ़ापे की निशानी है मेम साहब, भूलने की, बड़बड़ाने की।
0: सच में मुझे बुढ़ापा आ गया है। तुम तो दफ्तर में अपना समय निकाल लेते हो, पर बच्चों के बाहर पढ़ने जाने के बाद जैसे मेरे पास तो कोई काम ही नहीं रह गया है। एकदम खाली हो गई हूँ, समय काटे ही नहीं कटता है।
1: अरे अरे अरे, मायूस क्यों होती हो? तुम अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी में या शॉपिंग करके अपना टाइम पास कर लिया करो।
0: रहने दो रहने दो, ये सब रोज रोज नहीं होता। अरे पहले चश्मा तो ढूंढ लूं। कहा गया? अच्छा हाँ, ये रहा, मिल गया। चलो अब पेपर पढ़ा जाए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है।
1: अच्छी खबर? अब ऐसी कौन सी अच्छी खबर पढ़ ली तुमने?
0: मुझे ना मेरे सपने सच होते हुए नजर आ रहे हैं।
1: अब बताओगी भी कि ऐसी क्या अच्छी खबर है जो तुम्हारे सपने सच हो गए?
0: देखो जी, हमारे बच्चे तो पढ़ने बाहर चले गए हैं और तुम भी अपने ऑफिस में बिजी रहते हो। बच्चे थे तो उनके साथ मैं व्यस्त रहती थी, पर अब मेरे पास ढेर सारा खाली समय है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि अपने इस खाली समय को कुछ रचनात्मक कामों में लगाऊं।
1: रचनात्मक काम? और तुम?
0: मेरा मजाक बनाने से पहले मेरा प्लान तो सुन लो, हैरान रह जाओगे।
1: यदि ऐसी बात है तो सुनाओ जरा, क्या प्लान है तुम्हारा?
0: अब देखो, अखबार में प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना के बारे में विस्तार से आया है।
1: प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना? अबे ये क्या है भाई?
0: अरे मेरी पूरी बात तो सुनो। देखो, ये एक ऐसी योजना है जिसमें लघु और घरेलू उद्यमियों को कम ब्याज दर पर लोन की सुविधा दी जाती है, जिससे वो अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर स्वावलंबी बन सकें। और इस योजना में 50,000 से 10,00,000 रुपए तक का लोन दिया जाता है। और
1: रंजना रंजना, सुनो सुनो सुनो, पहले मेरी बात सुनो। ये मुद्रा बैंक योजना, ये लघु उद्यम, अरे भाई इन सब से तुम्हें क्या लेना देना है?
0: देखो भाई, बात ये है कि इन दिनों मेरे पास काफी सारा खाली समय रहता है, और मैंने शादी से पहले अपनी मम्मी से सिलाई बुनाई कढ़ाई बहुत अच्छे से सीखा था, और बाद में इन सब का विधिवत

0: कोर्स करके सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया था।
1: तो क्या कहना चाहती हो तुम?
0: तो मैं ये चाहती हूँ कि इस प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना से कम ब्याज दर पर लोन लेके मैं अपने घर पर ही एक छोटा सा बुटीक खोलूं, जहाँ अपने हाथ से बनी हुई सारी चीजें बनाकर रखूं। तो इस तरह मेरे समय का सदुपयोग भी हो जाएगा और मेरे सीखे हुए हुनर को एक नई दिशा भी मिल जाएगी।
1: रहने दो रंजना, ये सब तुम्हारे बस का नहीं है।
0: क्यों, मेरे बस का क्यों नहीं है?
1: अरे तुम कहाँ इन सब चक्रों में पड़ोगी, रहने दो, कुछ नहीं होने का तुमसे।
0: देखो ऐसा बोल के ना गुस्सा मत दिलाओ मुझे। क्यों नहीं होगा मुझसे बताना जरा।
1: सुबह सुबह पता नहीं क्या फितूर सोचता है तुम्हें। छोड़ो, तुमसे तो बात करना ही बेकार है।
0: हाँ, रहने दो, मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करनी।

0: अरे भाई रंजन, कहाँ हो? घर में कोई नहीं है क्या? कहाँ भाई, सब हो कहाँ? अरे भाभी जी नमस्ते।
1: हाँ नमस्ते रमेश भैया, आइए आइए।
0: गुड मॉर्निंग रंजन भाई।
2: अरे गुड मॉर्निंग। आओ रमेश यार आओ। वाह भाई वाह।
0: क्या बात है यार रंजन, सब ठीक है ना? घर में बड़ी शांति है।
2: अरे कुछ नहीं यार, बस बैठे बिठाए रंजना को कुछ ना कुछ उठपुटांग सूझता रहता है। मैंने मना किया तो नाराज हो गई।
0: अरे पर बात क्या है, जरा विस्तार से बताओ ना।
2: ये रंजना कुछ प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना के बारे में कह रही थी। अरे यार ये सब फालतू की बातें हैं, तुम ही बताओ कौन इस सब चक्रों में फंसे। यही बात मैंने रंजना को समझाना चाहा तो नाराज हो गई।
0: नाराजगी वाली बात तो तुमने की है भाई रमेश।
1: वही तो।
2: क्यों, ऐसा क्या कहा मैंने?
0: तुम्हें मैं बाद में बताता हूं, पहले भाभी जी की बात तो सुन लो। भाभी जी, रंजन कह रहा है कि आप प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना से कुछ खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं।
1: रहने दीजिए भैया, क्या फायदा, मेरी बातों की अहमियत ही कहाँ है यहाँ पर।
0: अरे भाभी जी ऐसा मत कहिए, आपने बहुत ही अच्छा सोचा है। आप फिक्र मत करिए, आपके सपने जरूर साकार होंगे।
1: सच में?
0: अरे भाई रंजन, तुम समझो तो सही, भाभी जी कहना क्या चाह रही हैं? बिना पूरी बात जाने तुम बिगड़ जाते हो यार, ये सही बात नहीं है।
2: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अब तुम भी मुझे ही समझाओ, है ना?
1: देख लिया ना भैया, इसीलिए मैं कह रही थी कि रहने दीजिए।
0: अरे नहीं भाई, पहले तो तुम दोनों आपस में लड़ना बंद करो और ध्यान से मेरी बात सुनो। देखो रंजन, प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना हमारे प्रधानमंत्री द्वारा लागू की गई बहुत ही उपयोगी योजना है, जिसमें छोटे उद्यमियों को कम ब्याज दर पर 50,000 से 10 लाख तक का लोन दिया जाता है, और इसमें 3 स्तर पर लोन दिए जाते हैं। आप अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं तो शिशु स्तर का लोन जो 50,000 तक का होगा, दूसरे स्तर पर यानी किशोर स्तर पर 50,000 से 5 लाख का लोन, और तीसरे स्तर को तरुण स्तर का नाम दिया गया है, जिसमें 5 से 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है।
2: सुन ली तुम्हारी बात भाई रमेश, सब ठीक है, बहुत अच्छा है, पर ये सब काम क्या रंजना के बस का है?
0: ये तुम्हारी एक गलतफहमी है रंजन, इस योजना का लाभ उठाकर तो गांव की महिलाएं भी खुद के व्यवसाय चला रही हैं और आत्मनिर्भर हो रही हैं। फिर हमारी भाभी तो पढ़ी लिखी है और स्मार्ट है। वैसे भाभी जी आपने क्या सोचा है, लोन लेकर आप क्या करना चाहेंगी?
1: मैंने तो भैया अपना बुटीक खोलने का सोचा है, जिससे मैं अपनी सीखी हुई कला को निखार सकूं और मेरा समय भी बीत जाएगा।
0: बहुत ही अच्छा सोचा है आपने भाभी जी। आप प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना में शिशु स्तर पर लोन के लिए आवेदन कर दें
1: अच्छा।
0: और बस अपना बुटीक खोलने की तैयारी शुरू कर दीजिए। रंजन यार, अब तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है ना?
2: भाई दिक्कत तो नहीं है, पर यार रमेश जरा और विस्तार से बताओ।
0: ये एक बहुत ही सीधी सरल योजना है, जिसमें

0: दिए जाने वाला ऋण का लोन अल्प वित्त संस्थाओं जैसे वित्त संस्थाओं, MBFC और अन्य कई बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। और तो और इसमें महिला उद्यमियों हेतु महिला उद्यम निधि नामक एक विशेष योजना संचालित की गई है, जिसमें हर तरह की महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान की जाएगी। और सबसे अच्छी बात तो ये है, आपको आपके शुरू किए गए व्यवसाय में जब कभी धन की अच्छी आय हो तब आप लोन की राशि लौटा भी सकते हैं, ताकि ब्याज का बोझ कम हो।
1: अच्छा, ऐसा क्या भाई? सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है यार।
0: अरे सुनने में ही नहीं, ये कारगर रूप में भी अच्छा है, समझे?
1: रंजना सुनो, अब मैं इस योजना को पूरी तरह समझ गया हूँ और चाहता हूँ इस योजना का लाभ उठाकर तुम अपना बुटीक खोलकर अपने समय का सदुपयोग करो।
2: क्या सच में तुम्हें मंजूर है ना?
0: अरे भाभी जी, इसमें ज्यादा मत पूछिए, इसके मूड का कोई भरोसा नहीं।
2: पर अब मेरा मूड बहुत अच्छा हो गया है, तो सबके लिए गर्मा गर्म चाय तो बनती है ना?
1: बिल्कुल भाई बिल्कुल। सिर्फ चाय ही नहीं, बल्कि तुम्हारे एक बुटीक खुलने की खुशी में सबका मुंह भी मीठा करवाओ।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
0: भाभी जी, पर एक बात है।
1: क्या बात है?
0: बुटीक खुलने के बाद आपके पास तो समय ही नहीं होगा, इसलिए आप अभी हमें चाय के साथ साथ अपनी स्पेशल पकौड़े भी खिला दीजिए।
2: अच्छा।
0: पता नहीं फिर कब मौका मिले, है ना?
1: हाँ।
2: जरूर जरूर, अभी लाई गर्मा गर्म चाय और गर्मा गर्म पकौड़े।

0: अजी सुनिए, अजी सुनिए,
1: अजी सुनिए। ये झलकी अभी आप सुन रहे थे, आलेख अनुभा अग्रवाल का और प्रस्तुति थी समीर शुक्ल की। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

श्रोताओं, अब एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, आज यानी मंगलवार 14 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो किसानवाणी कार्यक्रम का विषय होगा नर्सरी तालाब में मत्स्य बीज उत्पादन और प्रबंधन, और इस विषय पर आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे मनीषा खापरडे, विषय वस्तु विशेषज्ञ मत्स्यिकी कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स है 4003482, 4003483 और 4003484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग 14 जुलाई यानी आज 2026 को दिन के 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आज यानी मंगलवार को शाम 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। सूचना समाप्त हुई।

बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में सुबह के 9:15 हुए हैं। लीजिए पेश है चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार रोशन और फिल्म है ममता।

0: मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। लीजिए अब सुनिए हकीकत फिल्म का गीत, आवाज लता मंगेशकर की। कैफी आजमी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है मदन मोहन ने।

0: रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर।
1: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फराए
2: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं। कभी कोई किस्सा याद आता है, कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
3: मुझे कुछ कहना है,
4: मुझे भी कुछ कहना है।
2: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। किशोर कुमार के स्वर में आइए अब सुने परवाना फिल्म का गीत। नगमा निगार कैफी आजमी, मौसिकार हैं मदन मोहन।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार, बारी बखरी के गोठ, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। औ तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनाओ संगी संगवारी मन ला तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।

अनपढ़ लीजिए, अब आपको सुनवाते हैं इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर के स्वर में। राजा मेहदी अली खां के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है मदन मोहन ने।

लीजिए, कार्यक्रम के आखिर में सुनिए आशा भोसले की आवाज में साहिर लुधियानवी की रचना, तर्ज रोशन की, फिल्म है दिल ही तो है।

0: चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। चित्रपट संगीत आप इसी सभा में 10:30 पर भी सुन सकते हैं। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 9:40 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं महत्तर राम साहू और साथी। आइए श्रोताओं पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: लीजिए लोक संगीत के कार्यक्रम में पहले सुनिए महत्तर लाल साहू और साथियों के स्वर में ये गीत।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: लोक संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए महतर लाल साहू, लेखुराम, सुखीराम और साथियों के स्वर में ये लोकगीत।

0: अब पेश आज के मुख्य समाचार। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भू संपत्ति का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने चलाया जा रहा है राजस्व ग्राम सर्वेक्षण अभियान। खरीफ मौसम के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 12 जुलाई से पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और भारतीय सेना ने छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों के लिए आयोजित कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के परिणाम घोषित कर दिए हैं। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भू संपत्ति का डिजिटल सटीक रिकॉर्ड तैयार करने के साथ ही भूमि स्वामियों को उनके भूमि और मकान का मालिकाना हक प्रदान करने के लिए राजस्व ग्राम सर्वेक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत राजस्व विभाग ने प्रदेश में कुल 20,551 राजस्व ग्रामों में से 19,805 ग्रामों का विस्तृत सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया है। डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होने से भूमि संबंधी आपसी विवादों और मुकदमों में कमी आएगी। वहीं किसानों को बैंकों से ऋण प्राप्त करने, फसल बीमा और शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में भी सुगमता होगी। प्रदेश में खरीफ मौसम के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 12 जुलाई से पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कृषि विभाग ने प्रदेश के किसानों से 31 जुलाई तक धान, मक्का, सोयाबीन सहित 11 अधिसूचित फसलों का बीमा कराने की अपील की है। मौसम विभाग द्वारा अलनीनो के प्रभाव से अनियमित या कम वर्षा की आशंका जताए जाने के बीच कृषि विभाग ने कहा है कि फसल बीमा किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के विरुद्ध आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा। कृषि विभाग ने किसानों से फसल क्षति होने पर 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना संबंधित विभाग, बैंक, बीमा कंपनी या टोल फ्री नंबर 1-4-4-4-7 पर देने की अपील की है। भारतीय सेना ने आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों के लिए आयोजित कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन CEE के परिणाम घोषित कर दिए हैं। यह परीक्षा 1 से 12 जून तक राज्य के 10 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। अभ्यर्थी अपना परिणाम भारतीय सेना की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in और आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस रायपुर के सूचना पटल पर देख सकते हैं। कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सफल अभ्यर्थियों को अब शारीरिक दक्षता परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सीय परीक्षण सहित भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में शामिल होना होगा। हवलदार और जूनियर कमीशन्ड अधिकारी पदों के लिए भर्ती रैली 25 जुलाई से 6 अगस्त तक मध्यप्रदेश के सीहोर में आयोजित की जाएगी। बिलासपुर जिले के सरकंडा स्थित बाल संप्रेक्षण गृह में 4 बाल अपचारी ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्ड की हत्या कर फरार हो गए। ये चारों बाल अपचारी हत्या, दुष्कर्म, चोरी जैसे मामलों में बाल संप्रेक्षण गृह में निरुद्ध थे। फरार होने के दौरान ये अपचारी बाल संप्रेक्षण गृह में लगा CCTV का DVR भी अपने साथ ले गए। बिलासपुर जिले में बिलासपुर उर्गा के बीच बन रही सड़क पर देर रात हुए हादसे में 4 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ढेंका के पास निर्माणाधीन पुल से एक कार करीब 30 फीट नीचे जा गिरी। कार सवार सभी युवक कोरबा से बिलासपुर की ओर आ रहे थे। इस दौरान अरपा नदी पर बन रहे अधूरे पुल से कार हवा में उछलकर नीचे जा गिरी। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को कार से बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा को की OMR शीट और रिकॉर्ड किए गए उत्तर जारी कर दिए हैं। एजेंसी ने बताया कि उम्मीदवार NTA की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर लॉग कर इन OMR शीट और उत्तर देख सकते हैं। राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नरी में प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। गृह विभाग ने 3 रिक्त DCP पदों पर ASP तारकेश्वर पटेल, रचना झा और दीपमाला कश्यप की पदस्थापना की है। तारकेश्वर पटेल को सेंट्रल जोन, दीपमाला कश्यप को नॉर्थ जोन और रचना झा को ट्रैफिक और प्रोटोकॉल का DCP बनाया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भू संपत्ति का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने चलाया जा रहा है राजस्व ग्राम सर्वेक्षण अभियान। खरीफ मौसम के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 12 जुलाई से पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और भारतीय सेना ने छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों के लिए आयोजित कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप 11:55 पर सुन सकते हैं। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं।

0: लोक संगीत के कार्यक्रम में कलाकार थे महतरलाल साहू और साथी। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 9:55 होने को है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अब प्रादेशिक समाचार सुनिए।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा।

0: छत्तीसगढ़ की लोक कल्याणकारी सरकार जनहित में लोक सेवा के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहती है। यही कारण है कि यहाँ जनता के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार के लिए सर्वोपरि है अपने नागरिकों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पूरा करना। इसीलिए शासन द्वारा नित नए संसाधनों को विकसित किया जाता है और उन्हें प्रभावी ढंग से जन जन तक पहुंचाया जाता है। हितग्राहियों तक शासकीय सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच आसान बनाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने अपना आधिकारिक पोर्टल सेवा सेतु आरंभ किया है। सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रदेश के नागरिक जन केंद्रित योजनाओं और सेवाओं के लाभ आसानी से निर्धारित समय सीमा में उठा सकते हैं। इससे कागजी कार्यवाही और दफ्तरों के चक्कर लगाने के झंझटों से मुक्ति मिली है। छत्तीसगढ़ सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सेवाएं अब सबके लिए सुलभ हो गई हैं।
1: मेरा नाम सुनील कुमार दुर्गम है। मैं ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हूँ, जिला बीजापुर, छत्तीसगढ़ स्टेट। सेवा सेतु के बारे में मैं बताना चाहूंगा। सेवा सेतु एक छत्तीसगढ़ के नागरिकों तक सरकारी डिजिटल सेवाओं को मतलब सरल, सुलभ और पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंचाने के एक महत्वपूर्ण पहल किया गया है। इसके माध्यम से नागरिकों को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अपने आवेदन की स्थिति और निगरानी कर सकते हैं तथा जो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इससे सेवा वितरण में पारदर्शी, जवाबदेही और दक्षता सुनिश्चित होती है। हम ये बोल सकते हैं कि सेवा सेतु पोर्टल को पारदर्शी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें सभी आवेदन, जितने भी आवेदन हमारे सेवा सेतु पोर्टल में आते हैं, सभी आवेदन ऑनलाइन दर्ज किया जाता है, जिसकी रिकॉर्ड भी सुरक्षित रहती है और आवेदन की वर्तमान स्थिति, एप्लीकेशन स्टेटस और नागरिकों द्वारा ऑनलाइन मतलब देखी जा सकती है, उनका कौन से लेवल में पेंडिंग है और सेवाओं के लिए निर्धारित समय सीमा भी तय किया होता है और प्रत्येक आवेदन संबंधित अधिकारी को ऑनलाइन आवंटित होता है, जिससे जवाबदेही सुनिश्चित होती है। आवेदन की निरंतर मतलब मॉनिटरिंग जिला स्तर से भी की जाती है ताकि समयबद्ध तरीके से कोई भी आवेदन निराकरण हो सके और आवेदन के निस्तारण का डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध रहता है, जिससे

आवश्यक हस्ताक्षेप और त्रुटियां की संभावना भी कम होती है और नागरिकों को सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया स्पष्ट और समान रूप से उपलब्ध होती है। इसमें लगभग सभी सेवाओं को जो पहले से चले आ रहे हैं और अभी जैसे आय जाति निवास हो गया, अभी रिसेंटली जो सेवाएं चालू हैं जैसे मैरिज विवाह प्रमाण पत्र ग्रामीण स्तर पर जो नहीं थे उन लोगों को बहुत परेशानी करना पड़ता था ऑफलाइन, क्योंकि माने नहीं कर रहे थे जैसे आधार कार्ड में नाम परिवर्तन किए जैसे शादी के बाद महिलाओं का। तो जब ये सेवाएं ग्रामीण स्तर पर भी आ गए हैं सचिवों के माध्यम से जारी होता है तो ऑनलाइन ऑनलाइन उनको आवेदक जो भी आवेदन करता है उनको ऑनलाइन ये सर्विस प्राप्त हो जाता है, मतलब सर्टिफिकेट उनको मिल जाता है। और इसके अलावा अभी जो रिसेंटली चालू है राशन कार्ड में जैसे नाम जोड़ना और नाम हटाना, तो ये भी ग्रामीण स्तर पर ये भी सेवाएं अभी चालू की गई है।

0: शासन द्वारा शुरू किया गया सेवा सेतु पोर्टल एक महत्वपूर्ण डिजिटल सुशासन पहल है, जिसके माध्यम से विभिन्न विभागों की कई सरकारी सेवाएं अब पूरी तरह से ऑनलाइन उपलब्ध हैं। अक्सर आम जनता को जरूरी प्रमाण पत्रों को बनवाने के लिए जिस परेशानी से जूझना पड़ता था, वे सभी दस्तावेज अब बड़ी आसानी से कम खर्च और सीमित समय में बन रहे हैं। अब आय, जाति, निवास, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र और खसरा भू नकल जैसी सभी प्रमुख सेवाएं एक ही जगह उपलब्ध हैं।
1: मेरा नाम अनुपेन प्रधान है, मैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जिला रायगढ़ से हूँ। मैं सेवा से तो हमारे ऑनलाइन सेवाएं हैं, जिसमें हमारे 400 से अधिक सर्विसेज हम लोग डिलीवर करते हैं। इसमें आय, जाति, निवास से लेकर राशन कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र सेवाएं इसमें है, 400 से अधिक सेवाएं हैं। हमारे सभी ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायत के पास में हमारे चॉइस सेंटर हैं। अब जिस भी आवेदक को उनके आवश्यकता अनुसार उनके प्रमाण पत्र चाहिए रहेगा या लाइसेंस चाहिए रहेगा, वो हमारे चॉइस सेंटर को जाते हैं और फिर वहाँ से वो एप्लीकेशन अपना चॉइस सेंटर से लेते हैं, या फिर अगर चॉइस सेंटर न चाहें जाना चाहें फिर भी वो नागरिक सेवा पोर्टल है जो स्वयं ही आवेदन कर सकते हैं, इस माध्यम से वो ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं। ये आवेदन सीधा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होते हुए संबंधित अधिकारी के पास पहुंचता है और वो लोक सेवा गारंटी के अधिनियम के अधीन इसका निराकरण होता है। निराकरण होने के पश्चात हमारे जो आवेदक हैं उनके मोबाइल नंबर पर यह मैसेज चला जाता है, आपका आवेदन स्वीकार है और उनका सर्टिफिकेट या लाइसेंस उनको जारी हो जाता है, जिससे उनको कहीं किसी पर्टिकुलर ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी सिंगल विंडो पर जाने नहीं पड़ती। वो खुद अपने घर में बैठकर या अपने वॉकिंग डिस्टेंस अपने पास में किसी भी चॉइस सेंटर में अपना आवेदन वो कर सकते हैं, और करने के साथ ही उनका जो ट्रेकिंग नंबर होता है उससे वो ट्रेक कर सकते हैं कि उनका आवेदन कहाँ पे किस ऑफिस में वो अभी लंबित है, तथा वो जो आवेदन है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में भी इसका समीक्षा होता है कि वो आवेदन लोक सेवा गारंटी का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। ये सब कुछ यहाँ से भी मॉनिटरिंग हमारे टीएल जो वीकली टीएल रिव्यू मीटिंग होता है इसमें रिव्यू होता है, जिससे हमारे आवेदक हैं उनको सही समय पर उनको सर्टिफिकेट प्राप्त होता है। इसमें आपका नगरीय निकाय के हैं, आपके आपके ग्राम पंचायत के विवाह प्रमाण पत्र हैं, राशन कार्ड है और आपके तहसील से जो राजस्व से हैं, आपके आय, जाति, निवास हैं और ई कोर्ट के भी सर्विसेज हैं, समानता नामांतरण के भी सर्विसेज हैं। इसमें हमारे 400 से अधिक सेवाएं इसमें चल रही है। इसमें फॉरेस्ट के भी सर्वे

हमारे कल्चरल डिपार्टमेंट की भी सेवाएं हैं, SSG खादी ग्रामोद्योग की भी सेवाएं हैं इसमें। ऑनलाइन दो तरीके से होते हैं, एक आवेदक जो है वो स्वयं कर सकता है, या तो वो अपने व्हाट्सएप के माध्यम से, अपने चैटबोर्ड के माध्यम से भी आवेदन कर सकता है। अब चैटबोर्ड का भी हमारे सेवा सेतु में फीचर है, चैटबोर्ड से भी आवेदन कर सकता है व्हाट्सएप के माध्यम से। दूसरा वो पोर्टल में वो स्वयं अपना लॉगिन आईडी बना सकता है, सिटीजन लॉगिन के माध्यम से खुद लॉगिन करके उसमें आवेदन कर सकता है। तीसरा, अगर आवेदक को किसी की जरूरत पड़ती है तो हो सकता है कि वो, मैं अपना कंप्यूटर के जानकार नहीं हूँ या मोबाइल से जानकार नहीं हूँ ऐसा सोचता है, तो वो हमारे निकटतम ग्राम पंचायत के पास में हमारे जो च्वाइस सेंटर होते हैं जिनको हमने ट्रेनिंग दिया हुआ है, प्रशिक्षण दिया हुआ है, उनका हेल्प लेकर उनके माध्यम से वो आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने का शुल्क मात्र 30 रुपया होता है, तो वो उनके माध्यम से वो आवेदन करते हैं।

छत्तीसगढ़ शासन ने एक बड़ी पहल करते हुए प्रशासनिक सेवाओं को और अधिक सरल, पारदर्शी और जन सुलभ बनाने की दिशा में सेवा सेतु पोर्टल को आम जनता के लिए मुहैया कराया है।

0: डिजिटल सुशासन की अभिनव पहल के तहत प्रदेश के नागरिकों को 441 से अधिक शासकीय सेवाएं एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। सरकार का उद्देश्य है कि ग्राम पंचायत स्तर तक इन डिजिटल सेवाओं को पहुंचाया जाए ताकि नागरिकों को त्वरित और सुविधाजनक सेवाएं मिल सकें।
1: मैं आशीष स्वर्णकर, सहायक प्रबंधक, जिला कलेक्ट्रेट, जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी राजनांदगांव से बोल रहा हूँ। सेवा सेतु परियोजना शासन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और एक महत्वपूर्ण सेवाएं हैं, जिसमें वर्तमान में पूर्व में 80 से 82 प्रकार की सेवाएं ही आम आदमियों को प्रदान की जा रही थी। इसको अभी फिर से रिवाइज करके इसमें लगभग 440 प्रकार की बहुत सारी सेवाओं को ऑनलाइन

गया है। मुख्य रूप से इसमें जो ग्रामीण स्तर पर होने वाले विवाह प्रमाण पत्र, नजुल पट्टा, नामांकन, भौती नामांतरण, इस टाइप की जो, और पंचायत स्तर की जैसे नल कनेक्शन के लिए हो गया, साफ सफाई के लिए हो गया, और सबसे महत्वपूर्ण इसमें राशन कार्ड परियोजना। राशन कार्ड के अंतर्गत जो एक आम आदमी जो होता था, उन्हें पहले पंचायत स्तर पर मैनुअली आवेदन करना पड़ता था, फिर विभिन्न प्रकार के ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ते थे। उन सब चीजों से हितग्राहियों को फायदा मिला है। राशन कार्ड एपीएल बीपीएल नाम परिवर्तन करना, जोड़ना, संशोधित करना, नए राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना, ये सारी सेवाएं आज सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से आम लोगों को प्रदान की जा रही है। और इस चीज का व्यापक प्रचार प्रसार भी शासन के द्वारा किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने इस परियोजना में विशेष ध्यान देते हुए अत्यधिक अनेक प्रकार के विभागों की सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है। इसका पूरा पूरा लाभ आम आदमी को मिलना चालू हो चुका है। लोग नित प्रतिदिन इसका उपयोग कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि सेवा सेतु परियोजना सिर्फ और सिर्फ सरकारी ऑफिस तक सीमित ना रहकर ग्राम गांव गांव में जो सीएससी या कॉमन सर्विस सेंटर है उसके माध्यम से प्रदाय की जा रही है, और इसका वृहत पैमाने पर लोग उपयोग कर रहे हैं। यह एक ऐसी सुविधा है, यदि कोई कंप्यूटर का जानकार है तो स्वयं नागरिक अपने स्वयं के नागरिक पोर्टल से भी इन सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। और यदि हितग्राही पढ़ा लिखा नहीं है तो नजदीकी सामान्य सेवा या लोक सेवा केंद्र के माध्यम से इसमें आवेदन किया जा रहा है, और लगातार आवेदन हमको प्राप्त हो रहे हैं। राजनांदगांव में भी अनेक हितग्राहियों के द्वारा इसका लाभ लिया गया। विशेष रूप से अभी जो मई और जून में जो विवाह का सत्र चलता है, सीजन चलता है, उसमें कई आवेदकों के द्वारा अपना विवाह किया गया। संबंधित पंचायत में ऑनलाइन करने के बाद उनका ऑनलाइन विवाह प्रमाण पत्र संबंधित सचिव के द्वारा जारी किया जा चुका है। इसी प्रकार राशन कार्ड के लिए भी अब आवेदन आने प्रारंभ हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि सरकार जनता के बहुत ही नजदीक पहुंच रही है और उनके घर तक पहुंच रही है। और जिस प्रकार की इनकी सोच रहती कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक इस सेवा का लाभ पहुंचाया जाए, तो यह सेवा का लाभ पहुंचाया जा रहा है और इसका व्यापक स्तर पर उपयोग किया जा रहा है आम लोगों के द्वारा। छत्तीसगढ़ में इस सेवा के प्रारंभ किए जाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को भी धन्यवाद, और हम एक कर्मचारी की हैसियत से यहाँ पर उपस्थित होने वाले प्रत्येक हितग्राही और सभी को इस चीज का प्रॉपर नॉलेज देते हैं। और आज ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना से या लोक सेवा केंद्र से इसका नाम हटाकर सेवा सेतु परियोजना कर भी दिया गया है, और यह एक बहुत अच्छी सुविधा है जिसका लोग फायदा उठा रहे हैं।

0: छत्तीसगढ़ सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से जरूरी प्रमाण पत्र और पंजीयन जैसी सुविधाएं तो आसान हुई ही हैं, साथ ही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़े आवेदनों की प्रक्रिया और श्रम एवं राजस्व विभाग की सेवाएं भी जनसुलभ हो गई हैं। सेवा सेतु के आ जाने से अब नागरिकों को अलग अलग सेवाओं के लिए विभिन्न कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि सारी सरकारी सेवाएं अब ऑनलाइन जो हो गई हैं।
1: मेरा नाम शांतनु शुक्ला है, मैं जिला कोंडा गांव में जिला प्रबंधक हूं और सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से समस्त नागरिकों को लगभग 400 से अधिक सेवाओं का लाभ एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिया जा रहा है, जिसमें वो विभिन्न प्रकार के जो

विभाग है उनके लोक सेवा गारंटी अंतर्गत की जो सेवाएं हैं उसको आवेदन कर सकते हैं सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से। तो इसके लिए उनको पोर्टल ओपन करके जो भी सेवाएं हैं उनको सारी लिस्ट है सेवाओं की, उनमें वो सर्च के ऑप्शन से खोज भी सकते हैं किसी स्पेशल सेवा को अगर खोजना चाहे तो, या फिर सारी सेवाओं की लिस्ट देख सकते हैं उसमें सेवाओं से संबंधित क्या विवरण है, क्या क्राइटेरिया होता है, उन सब सेवाओं के बारे में सहायक दस्तावेज क्या लगाने चाहिए, कैसे फॉर्म भरना चाहिए, उन सब के बारे में जानकारी दिया गया है। तो उसको पढ़ के वो अप्लाई कर सकते हैं, खुद से आईडी बना के खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं चाहे तो, या उनको लोक सेवा केंद्र के माध्यम से या किसी सेवा सेतु मैनेजर के संपर्क करना चाहें तो उससे भी संपर्क करके वो आवेदन डाल सकते हैं। आवेदन डालने के बाद क्या है, फिर संबंधित विभाग की वेबसाइट में वो उनके आईडी में वो आवेदन प्रदर्शित होता है और उसके निराकरण की स्थिति को देखने के लिए वो आवेदन की स्थिति भी देख सकते हैं पोर्टल के माध्यम से कि किस स्थिति में है उनका आवेदन, कि भाई अभी अगर तहसील में आवेदन किए हैं तो तहसील में भी अग्रसित हो गया है, कि अगर कुछ समस्या होगी तो उनको आईडी में वापस भी होता है वो कि भाई ये कुछ आपत्ति होती है तो उसका निराकरण करके भी दोबारा आवेदन प्रेषित किया जा सकता है। और अगर सर्टिफिकेट अगर उनका बन गया है, आवेदन अगर अनुमोदित हो जाता है तो उस आवेदन संख्या के माध्यम से वो अपना डिजिटली सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं जिसको कि वो अपने अन्य कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सुविधा सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से समस्त नागरिकों के लिए उपलब्ध है।

0: सरकार की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में सेवा सेतु ने पारंपरिक व्यवस्था को बदलते हुए नागरिकों को वन स्टॉप सॉल्यूशन मुहैया कराया है। पहले प्रमाण पत्र बनवाने जैसी मूलभूत सेवाओं में श्रम, समय और आर्थिक संसाधनों की काफी खपत होती थी, लेकिन सेवा सेतु के आ जाने से अब कई मुश्किलें आसान हो गई हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत नागरिकों को निर्धारित समय सीमा में सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। सेवा सेतु इसी अधिकार को व्यावहारिक रूप से मजबूत कर रहा है।
1: मेरा नाम देवेश कुमार सिंह है, जिला कबीरधाम से, ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। तो जैसे अभी मान के चलिए एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, ग्राम पंचायत विवाह प्रमाण पत्र, तो उसमें क्या सिस्टम हो गया है, पहले क्या है जो जारी होता था विवाह प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत स्तर पे, वो ऑफलाइन रहता था। तो ऑफलाइन रहने के कारण क्या हो रहा था कि एक तो कई लोग मिसप्लेस कर ले रहे थे, दूसरा उनको अगर जैसे शादी के बाद लड़की को अपना नाम चेंज करवाना, तो वो ऑफलाइन वाला वेरीफाई नहीं हो पा रहा था यूआईडीआई से, तो वो रिजेक्ट कर दे रहे थे। तो फिर इसको जैसे ही सेवा सेतु में ये चालू हुआ, अब वो ऑनलाइन सर्विस हो गया, उसमें क्यूआर कोड भी जनरेट हो गया, तो अब जैसे मेरे को अपना चाहिए विवाह प्रमाण, मैं उसको ऑनलाइन अप्लाई करूंगा। अप्लाई करने के बाद ऑनलाइन इसमें पेमेंट का भी सिस्टम है, जैसे अगर मैं एज अ नागरिक लॉगिन करूंगा, तो नागरिक लॉगिन करके फॉर्म भरूंगा, जो भी डॉक्यूमेंट है वो डालूंगा, ऑनलाइन चलान जो होगा, अगर मैं लेट है, अगर एक साल दो साल बाद बनवा रहा हूँ, तो 500 रुपए का चलान पटा दूंगा ऑनलाइन। उसके बाद वो पेमेंट होके डायरेक्ट सचिव की आईडी में चला जाता है, सचिव क्या करता है उसको वेरीफाई करके तुरंत जारी कर देता है। तो अब वो एक डिजिटली हो गया है, मेरा घूमेगा नहीं, अगर मिसप्लेस भी हो

रहेगा तो मैं पोर्टल के माध्यम से अपना मोबाइल नंबर डाल के निकाल सकता हूँ। अब वो डिजिटली हुआ तो उसमें क्यू आर कोड भी है, लड़की को अपना नाम चेंज करवाना है अगर आधार कार्ड में सरनेम, तो उसके बेस पे उसको अप्लाई करेगा, अप्लाई करने के बाद आधार वेरीफाई करेगा क्यू आर कोड के थ्रू, अब वो जारी हो जाता है। तो जैसे एक एक साथ दो दो सर्विस इजिली अवेलेबल हो गई है। सर्विस में तो बहुत सारी सर्विस आए हैं, जाती है, निवास है, विवाह प्रमाण पत्र है, आपका गुमास्ता लाइसेंस है, पेंशन की सर्विसेज है, तो जो भी ये तो मैं अभी जो रिसेंटली अभी राशन कार्ड भी सर्विस ऐड हो गया है, तो जो नया राशन कार्ड बनाना हो गया, राशन कार्ड में नाम जोड़ना हो गया, राशन कार्ड में नाम हटवाना हो गया, ये भी सर्विस चालू हो गई है। भूमि मतलब क्या भूया पोर्टल में चलता है वो भी ऑनलाइन है, लेकिन वो सेवा सेतु से अभी लिंक कर रहे हैं उसको भी, तो जैसे वो लिंक हो जाएगा ना, जैसे बाकी रीडायरेक्ट सर्विस ऐड हुए हैं तो वो भी प्रोसेस में आ जाएगा।

सेवा सेतु एक डिजिटल पोर्टल नहीं बल्कि शासन और नागरिकों के बीच विश्वास को मजबूत करने वाला एक प्रभावी माध्यम बन गया है। ऑनलाइन आवेदन और ट्रैकिंग प्रणाली के माध्यम से पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनी है। छत्तीसगढ़ वासी सेवा सेतु पोर्टल का अधिक से अधिक उपयोग करके डिजिटल सेवाओं का भरपूर लाभ उठा रहे हैं और सुशासन की पारदर्शी और सरल प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में सहभागी बन रहे हैं। राज्य शासन की ये पहल केवल तकनीकी परिवर्तन नहीं बल्कि प्रशासनिक संस्कृति में बदलाव का भी संकेत है। छत्तीसगढ़ में प्रशासन और जनता के बीच की मजबूत कड़ी है सेवा सेतु। इस सरल और सुगम सेतु पर अपने कदम रखकर प्रशासन और नागरिक अब एक साथ बढ़ रहे हैं उजाले की ओर।

0: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे छत्तीसगढ़ संवाद।
1: उजाले की ओर ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण होगा।

हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में सुबह के 10:30 हुए हैं। लीजिए, पेश है चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में, रचना इरशाद।

लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए श्रेया घोषाल और मोहित चौहान की आवाजों में प्रसून जोशी का लिखा गीत। संगीत शंकर एहसान लॉय का है। फिल्म है आरक्षण।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर। कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनिंग फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फरमाए।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं। कभी कोई किस्सा याद आता है। कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
3: मुझे कुछ कहना है,
4: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
5: सुनिए

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम यंगिस्तान। लीजिए श्रोताओं, आप सुनिए इस फिल्म का गीत, आवाज अरिजीत सिंह की। गीत के बोल लिखे हैं कौसर मुनीर ने, तर्ज जीत गांगुली की है।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में यंगिस्तान फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीतकार कौसर मुनीर और संगीतकार थे जीत गांगुली। श्रोताओं, अब एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। शनिवार 18 जुलाई 2026 को कार्यक्रम घर आंगन में प्रसारित होने वाले छत्तीसगढ़ी फोन इन फरमाइश कार्यक्रम जोहार बहनी के लिए श्रोताओं के फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग बुधवार 15 जुलाई 2026 को दोपहर 12 बजे से 12:30 तक की जाएगी। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स इस प्रकार हैं: 4003482, 4003482

श्रोताओं, ये है मर्डर 3 फिल्म का गीत, आवाज़ शफ़ाकत अमानत अली खान की, बोल सईद कादरी के और संगीत प्रीतम का है।

शफाकत अमानत अली की आवाज़ में अभी आपने सुना मर्डर 3 फिल्म का गीत। गीतकार सईद कादरी, संगीतकार थे प्रीतम। लीजिए कार्यक्रम के आखिर में सुनिए आतिफ असलम को, रचना दिनेश प्रिया की, संगीत सचिन जिगर का। फिल्म है बदलापुर।

इसी के साथ चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दिन के 11 बजने को है। हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
1: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमें

0: का अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3,00,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने सदस्य देशों से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की। वियतनाम के फूक द्वीप के पास हुई स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शव स्वदेश लाए गए हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो चि मिन्ह सिटी से मुंबई लाए गए। दूतावास ने कहा कि आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की सरकारें इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेंगी। वियतनाम में नाव दुर्घटना में जान गंवाने वाले आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने कहा है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इस 4 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम कपड़ा, फैशन, टिकाऊ प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित कर रहा है। इस कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। पश्चिम बंगाल में मछली पकड़ने वाली एक नाव बंगाल की खाड़ी में पलट गई। इसमें 9 मछुआरों की मौत हो गई है और 6 अन्य अब भी लापता हैं। ये नाव 2 जुलाई को शंकरपुर समुद्री बंदरगाह से 15 मछुआरों के साथ रवाना हुई थी। 5 जुलाई से नाव से संपर्क टूट गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रूपये और घायलों को 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। झारखंड में लातेहार जिला पुलिस प्रतिबंधित भाकपा माओवादी के क्षेत्रीय कमांडर रविंद्र गंजू को गिरफ्तार किया है। नक्सली रविंद्र गंजू पर 20 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस के अनुसार गंजू 22 नवंबर 2019 को चंदवा के लुकुया मोड़ के पास पुलिस दल पर हुए माओवादी हमले का मुख्य आरोपी है। इस हमले में 4 पुलिसकर्मी मारे गए थे। अमेरिका ने आज से होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमेरिकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में अमेरिकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। फीफा विश्व कप में आज रात टेक्सास के डलास स्टेडियम में पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। इंग्लैंड के लिलेशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का ये अंतिम मैच है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दिन के 11:05 हुए हैं। प्रस्तुत है समूह गान शिक्षा का कार्यक्रम। आज इसमें आप सुनेंगे उड़िया भाषा के गीत। बोल है केऊ बियामा धारी। रचनाकार हैं के सी पाणीग्रही।

0: बच्चों, आज मैं तुम्हें एक उड़िया गाना सिखाऊंगा। सीखोगे ना?
1: हाँ।
0: ये गाना एक भजन है जिसे श्री कालिंदी चरण पाणिग्रही ने लिखा है। किसने लिखा है?
1: श्री
0: कालिंदी चरण पाणिग्रही ने। अब इसे लिख लो।
2: क्यों नाम धरी,
1: क्यों नाम धरी,
2: डाकिबी तुमको,
1: डाकिबी तुमको,
2: तुमे जे सर्वनाम,
1: तुमे जे सर्वनाम,
2: क्यों नाम धरी,
1: क्यों नाम धरी,
2: डाकिबी तुमको,
1: डाकिबी तुमको,
2: तुमे जे सर्वनाम,
1: तुमे जे सर्वनाम।
0: यह हुआ ध्रुपद। अब पहला आंद्रा लिख लो।
2: आलोक तुमको,
1: आलोक तुमको,
2: नपारे देखाई,
1: नपारे देखाई,
2: तुमे जे देखाओ ताहारे,
1: तुमे जे देखाओ ताहारे,
2: आलोक तुमको,
1: आलोक तुमको,
2: नपारे देखाई,
1: नपारे देखाई,
2: तुमे जे देखाओ ताहारे,
1: तुमे जे देखाओ ताहारे,
2: तुमे जे बेढ़ी च,
1: तुमे जे बेढ़ी च, कोटि विश्वर,
2: सबुरी भीतरे बाहरे,
1: सबुरी भीतरे बाहरे,
2: तुमे जे बेढ़ी च,
1: तुमे जे बेढ़ी च,
2: कोटि
1: विश्वर,
2: सबुरी भीतरे बाहरे,
1: सबुरी भीतरे बाहरे।
0: ये हुआ पहला अंतरा। अब दूसरा अंतरा।
2: लुहा
1: होई तुमे,
2: झरी पड़ परा,
1: झरी पड़ परा,
2: केते नयनर कोणरु,
1: केते नयनर कोणरु, लुहा होई तुमे,
2: झरी पड़ परा,
1: झरी पड़ परा,
2: केते नयनर कोणरु,
1: केते नयनर कोणरु,
2: हस होई

0: तो अब यह गाना तो आपने सीख लिया, इसे याद रखना, भूलना नहीं। यह गाना तुम भी गाओ, अपने भाई बहनों से गवाओ तथा स्कूल में भी गाओ। नमस्कार।
1: समूह गान शिक्षा में अभी आप सुन रहे थे उड़िया भाषा के गीत। रचनाकार थे केसी पाणिग्रही। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। लीजिए सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम।

समूह स्वर में भीष्म सिंह की रचना अभी आपने सुनी। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए के परेश के स्वर में ये पारंपरिक रचना।

के परेश के स्वर में ये पारंपरिक रचना अभी आपने सुनी। सुगम संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11:30 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: बिंदिया शहरी महिलाओं का अनोखा कार्यक्रम सुनना ना भूलिए। प्रत्येक रविवार, सोमवार और गुरुवार को दोपहर 1:30 से दोपहर 2 बजे तक महिला समस्याओं का समाधान है बिंदिया। मीठी मीठी बातों का गुणगान है बिंदिया। डॉक्टर की सलाह, परिचर्चा, वार्ता और गीत संगीत की बहार है बिंदिया। हेलो बिंदिया में

0: बहनों के विचारों और गीतों का संसार है बिंदिया।
1: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे, प्रेम कहानी। आइए श्रोताओं, अब सुने इस फिल्म का गीत। आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की है, नगमा निगार आनंद बख्शी, मौसिकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

आशा भोसले की आवाज़ में आइए अब सुने मेरा साया फिल्म का गीत। गीतकार राजा मेहदी अली खां और संगीतकार हैं मदन मोहन।

सदाबहार नगमे की अगली पेशकश फिल्म तलाश से, आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, बोल मजरू सुल्तानपुरी के, संगीत एसडी बर्मन का है।